0: both protesters and cops bear the brunt of the clashes. The centre has stepped up its crackdown on the exam mafia with a series of sweeping reforms, from fast-track courts and tougher laws to NTA restructuring and mass terminations. The government says the clean-up has just begun. In an exclusive interview with NDTV, Chief Justice Suryakant has addressed the controversy head-on, rejecting claims that the Supreme Court refused a hearing. The CJI says the petition was heard only after it was properly filed. Well, some important updates coming in at this hour. Well, the Prime Minister has bolstered his Instagram outreach with yet another video. According to government sources, this time he's expressed gratitude to the youth. In his latest video, the Prime Minister reportedly thanked the youth for an overwhelming support to his earlier video. The Prime Minister, according to sources, also said in the video that the love and positive response will only make the bond grow stronger in the days to come. This comes at a time when students continue their protests and also when the Prime Minister allegedly has instructed his ministers to intensify their Instagram outreach. And this video is a testimony to the fact that the Prime Minister is leading from front as far as his Instagram outreach bid is concerned.
1: Thank you, friends. Kal der raat aapse milne ka mauka mil gaya. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू दोस्तों.
0: Let me now also take you through more updates coming in at this hour. Less than 24 hours since Prime Minister Modi made his late-night appeal to protesters, vowing strict action on the paper leak issue, the series of major decisions taken by the government still continues. While the government has already notified fast-track courts on the paper leak issue and has even transferred the Education Secretary, the Cabinet yesterday approved a new bill with more stringent punishment for the paper leakers. In the latest, the NTA is undergoing an overhaul, 47 NTA employees being terminated, 4 new general manager positions have also been notified, and 16 young professionals are going to be hired with further recruitment across 10 other verticals. The NTA is also set to get a new chief information security officer to oversee cyber security and a new chief of vigilance to see malpractice and coordinate with the CBI, ED and the police. Let's bring you more updates coming in at the top of this hour. Well, the government sources have told NDTV that Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is still not on the cards. According to government sources, the centre believes that quitting would be the easiest decision while responsibility lies in staying and fixing the system. The government sources say a list of problems within the NTA is being prepared for reforms. Several paper leak gangs have also been busted. And more action is now in the pipeline and the party continues to stand firmly behind the minister. However, the government's position stands in sharp contrast to the demands being raised by the students. While protesters are now seeking Dharmendra Pradhan's resignation, government sources say that the focus is on fixing the system rather than changing the minister. Meanwhile, a logjam is expected to continue in the parliament as opposition is hell-bent upon Dharmendra Pradhan's resignation.
2: 5 days तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए. हम तो आज भी फिर से अपील किया है. तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएनबी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे. हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए. अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है. एक्चुअली
3: रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
0: Well, recent breaking news coming in at this hour, let's take you through it. Well, Sonam Wangchuk has released a new video clarification. That's right, Sonam Wangchuk in his new video has now gone on to say, the student's safety was my top priority. He even has added that Dharmendra Pradhan's resignation was never my main demand. Sonam Wangchuk has said that the government already facing political pressure and that the focus was to shield the students from the FIRs. He said that he sought assurance of no action against the protesters and ended the fast to prevent violence. He wants to maintain peace, is what Sonam Wangchuk has said in his latest video. Let's also take you through the details of it.
4: तो 21 तारीख को ट्यूसडे को ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुँचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन। वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा, जो भी छात्र CJP के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, FIR नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता CJP के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर तीन तीन चार चार घंटे इंतज़ार करवाया गया। CJP के हमारे छात्राएं आई थी उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतज़ार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया।
0: Well, my colleague Anushka joins us on the broadcast to bring us the details. Anushka, there was widespread controversy on the manner in which Sonu Wangchuk broke his fast, and I believe he's now issued a clarification via a video message. If you could

0: हमको 7:30 8 बजे हम लोग मैम कौसर रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे, और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700 800 लोगों की थी, और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग, और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए, और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम, और उन लोगों ने हमारे पर अटैक कर।
1: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
0: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
1: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है। और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
0: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे भी थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे, और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम, और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और नहीं करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नो स्टूडेंट्स।
1: एनके सिंह जी, आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
2: मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था, तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए, फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, घूसे मारने लगे, देवर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी, 3 4 जगह मुझे इंजरी आई है, और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंखों आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150 200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
1: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे ये?
2: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे, मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था, तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था, वहां

0: जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन, एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
1: Well, listen, breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Well, Sonam Wangchuk has released a new video clarification. That's right, Sonam Wangchuk in his new video has now gone on to say, the student safety was my top priority. He even has added that Dharmendra Pradhan's resignation was never my main demand. Sonam Wangchuk has said that the government already facing political pressure and that the focus was to shield the students from the FIRs. He said that he sought assurance of no action against the protesters and ended the fast to prevent violence. He wants to maintain peace, as what Sonam Wangchuk has said in his latest video. Let's also take you through the details of it.
2: So, 21 तारीख को, Tuesday को order के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के hospital, Vedanta Hospital में पहुँचा। और उसी रात, देर रात, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे, वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, शर्तें होंगी, उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन। वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा, जो भी छात्र CJP के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर, और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, FIR नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा, और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के, राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता CJP के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर तीन तीन चार चार घंटे इंतज़ार करवाया गया। CJP के हमारे छात्राएं आई थी, उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतज़ार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया।
1: Well, my colleague Anushka joins us on the broadcast to bring us the details. Anushka, there was widespread controversy on the manner in which Sonam Wangchuk broke his fast, and I believe he's now issued a clarification via a video message. If you could just walk our viewers through the details, what exactly it is that the environmentalist has said?
3: That's right, Reet. We are seeing a lot of controversy going around in the manner with which Sonam Wangchuk has broken his fast. Now, he has issued a video clarification saying that the FIR and legal action was the main thing that he was worried about. He was worried that the youth who were

0: suggesting that the government was already facing enough political pressure over the resignation issue. Wangchuk now says that he ended his fast only after assurances that no action will be taken against protesters and compensation. He asked that the decision was taken to prevent violence, maintain peace, and even ensure the students remain protected, not because the resignation demand had been dropped.
1: और क्योंकि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा हादसा का डर था, तो मैंने इसे और एक दिन टालने से मना या अच्छा नहीं समझा इसे, और जितना जल्दी मैं ये कह सकूं कि मैं अनशन भी तोड़ रहा हूं, कृपया शांति रखिए, बेहतर होगा देश के लिए। और एक जगह अगर हिंसा हो गई तो तमाम शहरों में हिंसा होगी। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आप घर बैठे सोफा पर से इसके साथ क्यों अनशन तोड़ा, उसके साथ क्यों नहीं तोड़ा, बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा, कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को, जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे हालात में जब खतरा था विस्फोटक स्थिति का, तो लद्दाख के नेताओं को लाकर उनके साथ मैंने बासप्ता बाकायदा लिखवा कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी छात्र नेताओं पर, छात्रों पर, सीजेपी पर। और फिर लिखवाया कि कॉम्पनसेशन होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। हाँ, मैंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में उनसे ज़रूर कहा कि आप समय लेके भी करिए, मगर ये करना होगा। आपको जोर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है ये वैसे भी होने ही वाला है, तो मैं और दो दिन के लिए इसको क्यों टालता। इस जितना जल्दी होता भारत की शांति के लिए ये उतना ही काम आता, ये अनशन का तोड़ना। तो ऐसे हालत में कल मेरा अनशन तोड़ना हुआ। मेरा सबसे बड़ा दुख था कि मुझे उन हालात में तोड़ना पड़ा, रात के 12:30 बजे, जिसमें मेरे साथी जो छात्र हैं वो भी नहीं आ पाए। जो MPs यहाँ आए थे मिलने के लिए मुझसे, जिनको मैं बुलाना चाहता था दोबारा ताकि मैं उनके उपस्थिति में उनके हाथों से भी लेकर अनशन तोड़ूँ, वो नहीं आ पाए। वो मेरे दिल का सबसे बड़ा दुख होगा।
0: Well, listen, breaking news coming in now. Let's take you through it. Amid protests, the RSS chief Mohan Bhagwat has stressed family dialogue. RSS chief says that parents must answer children's questions. Kids learn more by example than words, is what the RSS chief has said. He's even gone on to add that family conversation must come back and have faith in India's culture as well as traditions. Let's also listen into what the RSS chief had to say.
2: तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है, और संवाद करने की ज़रूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। तो समय मिलेगा, समय मिली तो बात होगी, बात में गपशप होगी तो बच्चा खुलकर कुछ बोलेगा।
0: Well, my colleague Akhilesh joins us on the broadcast to shed more light on this. Akhilesh, important statement now issued by the RSS chief. He says that family dialogue must continue. If you could just walk us through the details of what he's exactly said and the context of it.
3: Well, he attended a program yesterday in Delhi where he spoke about the family values and that how in the modern times the family values have changed. He recalled his own childhood when children used to listen to the parents, but now the times have changed. What he says that parents now must address their children's queries, which it actually requires them to continuously expand their own knowledge. And children now learn more through imitation than through sermons. That's what RSS chief says. He says that devoting time to the family and maintaining open communication is the right now greatest need of the hour. He also told them that there should be discussion with the children. It should not be dictation. And also he said that there should not be any order to them, but there should be a consensus. So this is what he says. And he also told them very clearly that now these days when parents come back to home from

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
3: दिस काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
4: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
5: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
6: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
7: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
8: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
9: We've got a fantastic jury. And we've left all decisions to the wisdom of the jury.
2: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
10: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
11: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
13: सबका राजा आर्टियर मसाला।
1: This is India Inc's Roll of Honor, recognizing the leaders shaping India's growth story, where ambition, enterprise and excellence meet. In the presence of the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. NDTV Profit Business Leadership Awards, 26th July on the NDTV Network.

0: What happened yesterday at this meeting between CJP delegation constituting of Saurabh Das and Ashutosh Ranka, and from the government side we had Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. What happened after the meeting got over was the government side has confirmed that they have given approval to two demands that have been made by the CJP, while saying that they have sought some time with regards to their one of the most important demands, which is resignation of Union Minister Dharmendra Pradhan. Saurabh Das went on to say that it is non-negotiable. They want the resignation and they want Dharmendra Pradhan to be dismissed from the cabinet. However, the government is standing firm on its stance, saying that they have sought the time and they will have some internal discussions with top leadership in the government with regards to this, and they will come back for a third round of discussion, which is slated to take place at 3 p.m. today. On the other side, we have the CJP delegation saying that they will not accept anything less than the resignation of Dharmendra Pradhan. It remains to be non-negotiable. They confirmed that they have got approval on two demands that have been made by them out of the three. One of them being that the withdrawal of FIRs from the protesters, and also 1 crore compensation to the grieving families who lost their kids post this neat leak. So these are the developments that we have as of now, and we'll have to wait and see how things pan out post the third round of meetings today.
1: Absolutely, Soumi, you do stay on with me on the broadcast as we have some more breaking news coming in at this hour. Well, let's track some more breaking news for you. CJP has reiterated demands ahead of the meeting with the government. CJP spokesperson Ashutosh Ranka has said, and I quote, that the main demand is Dharmendra Pradhan's resignation. That is yet to be confirmed. He's even gone on to say that we've heard from sources that Pradhan will not give his resignation. Then there is no meaning of these meetings. So the CJP leadership now saying that if Dharmendra Pradhan will not resign, then there is no meaning of these meetings. He says that the youth has a single demand, which is the resignation of the Union Education Minister. Now, an important update coming in. Let's also listen into the reactions coming in at this hour.
2: May compensation और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था, हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे।
1: But my colleague Soumya is still with us on the broadcast. Soumya, we were just discussing about the sticking points that remain between the CJP and the government. And evidently, one very big sticking point is the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Now, in this, you can also hear that the CJP spokesperson is saying that if the resignation does not come through, then there is no point of these talks.
0: Well, see, Reet, what we saw happened yesterday, that also came after a lot of dialogue and communication from the government side. We saw 2 days in a row a proposal was sent to the CJP delegation for meetings, but it was denied on two grounds, saying that if the meeting happens at a neutral site or Jantar Mantar, then we will come for the dialogues. And second, that if there something solid comes out of that meeting, something meaningful comes out of that meeting, only then we will come for these meetings. Now, we saw yesterday both sides confirming that out of the three demands that have been made, two have been accepted by the government. One is still there are still no confirmation. However, sources within the government have confirmed that government is not going to go ahead with the resignation of Union Minister Dharmendra Pradhan. However, the CJP delegation government and the CJP leadership is on its stance, firmly standing that they want the resignation and the dismissal of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. How, if that does not happen, there is no such point of any of these meetings that have been happening over this week, the three meetings that have taken place. So this is what they have to say. They are expecting any movement, any decision with regards to Dharmendra Pradhan's resignation. On the other hand, we have the government and the sources within the government confirming that there is no resignation that is going to take place. Back to
1: all right, Soumya, thank you so much for joining us and sharing those important updates with us. Let's take you through more developments taking shape at this hour. Now, Sonam Wangchuk has released a fresh video clarification, saying that his fast was never primarily about Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. He says his biggest concern was protecting students from FIRs and legal action, while insisting that the government was already facing enough political pressure over the resignation issue. Wangchuk now says that he ended his fast only after receiving reassurances that no action would be taken against the protesters and compensation would be considered. He adds that the decision was taken to prevent violence and even maintain peace, and even ensure that students will in fact remain protected, not because the resignation demand had been dropped.
3: Tuesday ko order ke baad raat ko main yahan Gurgaon ke हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुंचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए. मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे, वगैरह वगैरह. मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी, उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा. तो शर्तें पूछी गई हमसे. मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन. वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए. पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए. और एक नया हमने जोड़ा, जो भी छात्र सीजेपी के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, एफआईआर नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा. तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा, और फिर वो चले गए. अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे. मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूँ, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों. इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के, राजनीतिक दलों के सांसद हैं, वो सब जितने आ सकें आएं, और फिर हमारे छात्र नेता सीजेपी के आएं, और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं, और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं.
1: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, government sources tell NDTV that Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is not on the cards. According to government sources, the centre believes that quitting would be the easiest decision, while responsibility lies in staying and fixing the system. Government sources say that a list of problems within the NTA is being prepared for reforms. Several paper league gangs have also been busted. More action is likely in the pipeline, and the party continues to stand firmly behind the minister. However, what's important to note is the fact that the government's position stands in sharp contrast to the demands made by the students. While protesters now seek Dharmendra Pradhan's resignation, the government says that the focus is on fixing the system rather than changing the minister. Meanwhile, a logjam is expected to continue in the parliament as opposition is hell-bent upon Dharmendra Pradhan's resignation.
4: आज दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए. हम तो आज भी फिर से अपील किया है. तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईन भी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली
5: रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कंडीशंस। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कॉन्वर्सेशन एनी डिस्कशन बिफोर मिस्टर प्रधान इज सैक्ड।
1: Well, less than 24 hours since Prime Minister Modi made his late night appeal to protesters, vowing strict action on the paper leak issue, the series of major decisions taken by the government still continues. While the government has already notified fast-track courts on the paper leaks issue and has transferred the Education Secretary, the cabinet yesterday in fact even approved a new bill with more stringent punishment for the paper leakers. In the latest, the NTA is undergoing an overhaul. 47 NTA employees are now being terminated. 4 new general manager positions have now been notified, and in fact 16 young professionals are now going to be hired with further recruitment across 10 verticals. NTA is also set to get a new chief information security officer to oversee cyber security and a new chief of vigilance to oversee malpractice and coordinate with the CBI, ED and the police. 5 days after the first violent clashes in Delhi, the fallout still continues. Protesters and police personnel have now both paid a heavy price, and the tension refuses to die down. The police continue to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claims he suffered a pellet injury. At the same time, the police say that they have come under repeated attack over the past couple of days, with multiple FIRs registered and scores of security personnel injured. Around 60 protesters were also injured in the July 20th clashes. But the bigger question remains, who is felling these confrontations and why does the cycle keep repeating itself? To understand what happened on ground, Managing Editor Padmaja Joshi has spoken to the two police officers who were injured during the clashes with the protesters. Listen to the conversation.
6: मैं आपसे शुरुआत करती हूं प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
7: 21 तारीख को करीब शाम को 7:30-8 बजे हम लोग मैम कौसर रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे, और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी, और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग, और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए, और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम, और उन लोगों ने हमारे पर अटैक।
6: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
7: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स है मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है, मैम कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
6: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है, और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
7: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे, और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम, और जो उनका बिहेवियर था, और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम दे वर नॉट स्टूडेंट्स।
6: एनके सिंह जी आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ, अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
8: मैम मैं मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो ग्राउंड प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था, तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए, फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, गुस्से मारने लगे, दे वर एग्रेसिव, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे, फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दिया, 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है, और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंखों, आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से, उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे उनके पास, कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
6: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं, क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है, आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे?
8: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे, मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं, तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर, ये बाहर सारे 2,500-3,000 लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
1: और रीसेंट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द नेशनल कैपिटल, लेट्स टेक यू थ्रू इट। We're learning some devastating information come to light where a student has been killed after a car plunged into a drain near Vasant Kunj in New Delhi. A 20-year-old student pursuing higher education in the United States has tragically been killed after he drove his car into a drain, losing control at a sharp turn. That's the latest we'll be learning at this hour. Yashwendra was the son of an Indian Army officer, as per the police. A female friend who was travelling with him, whose car it was, also sustained injuries in the accident. Let's also listen into the reactions coming in on this.
9: करीबन 5:50 की बात है, मैं एक ऑर्डर लेके आ रहा था, गाड़ी ना बहुत रफ्तार में थी, वो गड्ढा बचाने की वजह से उसने ना स्टीयरिंग को हिलाया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ब्रेक लगा नहीं, तो सीधा गाड़ी वहाँ से टकराया और पूरा पलटी मारने के कारण इसमें घुस गया। वो तीन लोग थे जो कि एक आगे चला रहा था, दो पीछे बैठे थे, दो तो पीछे अचानक से वो बाहर निकल गए गड्ढे में गिरने के कारण, और जो आगे बैठा था उसने सीट बेल्ट ना लगाने के कारण वो ऑन द स्पॉट निकल भी नहीं पाया और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई। अब बचा नहीं बचा ये तो हॉस्पिटल वाले ही बताएंगे।
0: A 20-year-old man named Yashvendra, the son of an Indian Army officer, died in a fatal accident yesterday here in Vasankuj area yesterday. Behind me is the very car in question. It is being told that the PCR got a call earlier yesterday in the morning. This car was driven by Yashvendra himself. The car belongs to his friend, a female friend who also was in the car while he was driving. The car belonged to her. She's also a resident of Vasankunj area. It is being told that they were taking a right turn from Nangal Devat red light area. The turn was subsequently a sharp turn, and because of the slippery road, Yashvendra lost the control of the car. And eventually they fell into this pit and it overturned. The friend tells that he suffered severe injuries and later on succumbed to it. The police got the call, the PCR got the call, and they came at the spot. At this moment they recorded the statement of the female friend, and now investigations are underway. It is being said that both of them are friends. They were pursuing their higher education from the United States. Just day before yesterday, they were at a friend's place here in Vasankunj area only, and Yashvendra was driving this car earlier yesterday in the morning, and he was on his way to drop his female friend at his residence when this fatal accident took place, wherein he suffered severe injuries and succumbed to those injuries.
1: Let's now take you to Assam, where more developments are taking shape at this hour. An important update coming in, as we're learning that there has been, of course, heavy rains that have triggered severe flooding all across Assam, with the Sivasagar among the worst hit districts. Hundreds of families remain stranded as villages, roads and vehicles are completely submerged. Here's a roundup of the latest developments. Let's take you through it. Severe flooding in Assam's Sivasagar district has left residents stranded on rooftops after heavy rains and overflowing rivers submerged entire villages. Cars, scooters and motorcycles are submerged under flood waters. The village temple has also been devastated, and residents are surviving on upper floors and rooftops as floods continue to wreak havoc in Sivasagar. Amid the devastating floods in Upper Assam, a remarkable act of solidarity has now emerged. Residents in the Salmora in Majuli have voluntarily sent traditional country boats to neighbouring Sivasagar, helping rescue teams reach people in flood-stranded areas. Several roads in Guwahati remain submerged after heavy rainfall, bringing traffic to a standstill and causing massive congestion across the city. On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा।
5: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
7: I think it's heartening to see talent that there is across India Inc.
8: We should be awarding companies.

0: Well, 5 days after the first violent clashes in Delhi, the fallout continues. Protesters and police personnel have both paid a heavy price, and the heavy tensions refuse to die down. The police continues to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claims he suffered pellet injuries.
1: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
2: हम 21 तारीख को करीब शाम को 8:30 बजे हम लोग कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे, और वहां पर मैं कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी,

0: मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग, और वहाँ पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इसे आगे मूव मत कीजिए, और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम, और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया।
1: किस तरीके से अटैक किया आपको? ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
0: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई हैं मैम, कुछ मतलब शार्प है चीजें भी फेंकी गई हैं। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प है वेपन था, बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
1: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है। और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे। पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे? क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
0: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे भी थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे, और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम। और जो उनका बिहेवियर था, और वो मैं सडनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था, बिहेवियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते। तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नो स्टूडेंट्स।
1: एनके सिंह जी, आप बताइए फिर 22 तारीख को आपके साथ क्या हुआ? अमूमन कितने बजे होगा, आप क्या कर रहे थे, झड़प शुरू कैसे हुई?
2: मैम मेरी नाइट ड्यूटी थी 8 बजे के करीब, मुझे जगह नहीं मिली कहीं पर भी, तो गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर रोड पर लगाई जो कनॉट प्लेस थाने के साथ में है रोड, वहां से मैं पैदल पैदल निकलते हुए जंतर मंतर की तरफ आ रहा था। तो जैसे ही संसद मार्ग पर मैं पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं सब लोग, तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मैं चलने लगा, चलते चलते थोड़ा जो बीच में चलने लगा तो पीछे से कोई शाउट कर रहा था, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे, मोदी की पुलिस आगे मारो इसे। तो धक्का मुक्के स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई आप स्टूडेंट्स हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो फिर कह रहे ठीक है आप चलिए। फिर मैं और चलने लगा, फिर पीछे से लात मारने लगे, घूसे मारने लगे, देवर एग्रेसिव। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मैं थोड़ा भागा उनसे। फिर मुझे वो लाठी डंडे और किसी के हाथ में शायद वो शार्प एज वेपन्स थे कुछ ना, शायद चाकू जैसे कुछ या ब्लेड टाइप के, उन्होंने सर में मारना स्टार्ट कर दी। 3-4 जगह मुझे इंजरी आई है, और हेलमेट वगैरह कुछ मारा उन्होंने, घूसे मारे मेरी आंख पे भी लगी है मैम यहाँ पर ना, आप देखेंगे काफी, तो पूरी बॉडी में उन्होंने फिर मुझे घेर कर, करीब 150-200 लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे लगता है जान से मारने के लिए सोचा हुआ था कुछ इस तरह से। उन्होंने पहले से प्री प्लान मैनर था उनका मैम, दे हैड मतलब उनके पास हर तरह के वेपन्स थे, उनके पास कुछ भी जो भी बेल्ट वगैरह इस तरह से कुछ भी उनके पास जो भी हाथ में था उसे मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे मैम दूर से भी।
1: आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं या कुछ अराजक तत्व, कुछ बाहरी तत्व मिले हुए हैं? क्योंकि अब जंतर मंतर में जितना मैंने देखा है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब एक तो आपको सेट दिखाई देता है बच्चों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या मकसद है। आपका क्या एनालिसिस है, कौन किस तरीके के लोग थे ये?
2: मैम ये जो इनकी एज ग्रुप था ये 20 से 35 साल की उम्र के सब लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स हैं सब लोग ना, जो प्रोटेस्ट अंदर कर रहे हैं जंतर मंतर धरना एरिया में, और ये बाहर जो है सब बराबर ही होंगे। मेरी ड्यूटी पहले भी वहां लगी है जंतर मंतर धरना एरिया में, तो ऐसा वहां पे कोई व्यवहार नहीं करता, सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके बीच में सोचा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा तो है नहीं हमारा उनसे, हम भी एक आम जनता ही होते हैं, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। तो मैं तो सिर्फ उनके इस तरह सोच के ही मैं वहां से निकल रहा था। तो लेकिन वो तो प्री प्लान मैनर में थे मैम, अगर अगर ये स्टूडेंट्स होते तो ये धरना एरिया में जाकर कुछ बात करते ना मैम, इनको अपना कुछ बोलना था वहां बताते जाकर, ये बाहर सारे 2-2.5 हजार 3 हजार लोग बाहर हैं, ये वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सीआरपीएफ वाले, आरपीएफ वाले, दिल्ली पुलिस, जो भी इनको वर्दी में मिले, इनको कहीं से आदेश मिल रहा है कि मारो इनको, मार के कुछ दिल्ली में अराजकता फैलाओ, वॉयलेंस फैलाओ, इस टाइप से कुछ इनको आदेश मिला हुआ है।
3: Let's take you through more updates coming in at this hour. Recent breaking news coming in. As the Delhi Police's FRS system has made a major revelation. 400 individuals with criminal records were spotted roaming outside the protest site at Jantar Mantar and the surrounding areas. These 400 criminals were found moving around Jantar Mantar and its vicinity between July 20th and July 24th. They were identified using the FRS system. Criminal elements were also among those who were involved in the vandalism. The New Delhi area on July 20th saw about 400 of these criminals roam alongside its territory. My colleague Mukesh brings us the details. Let's take a look.
4: जंतर मंतर पर पुलिस ने FRS enabled कैमरे लगाए हैं। अब इसको लेकर एक तरह की अफवाह उड़ रही है कि दिल्ली पुलिस छात्रों की जासूसी कर रही है, उनकी प्राइवेसी को भंग कर रही है। आखिर FRS सिस्टम क्या होता है, जिसको एक देशी भाषा में परख भी कहते हैं, ये पूरा सिस्टम कैसे क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वक्त मैं FRS के कंट्रोल रूम में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड आ रही है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। अब FRS सिस्टम काम कैसे करता है, जो FRS इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है यानी कि जो उनका पुराने केस हैं उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। तो जैसे ही कोई सस्पेक्ट आता है इन कैमरों की जद में, चाहे भले ही सैकड़ों लोग खड़े हों, उनमें से उस सस्पेक्ट की फ़ोटो वो निकालता है और पूरी फ़ोटो जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कंट्रोल रूम में बैठा शख्स होता है और नोटिफिकेशन आते ही उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आती है। और राइट में ये आप जो देख रहे हैं डेटा, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हज़ारों की संख्या में जो असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, उन सबका यहाँ पर डेटा इस सॉफ्टवेयर में है और पूरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पूरा डोजियर है, फोटो तस्वीरें, वो सारा इस सॉफ्टवेयर में होता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो FRS इनेबल कैमरों से कनेक्ट होता है और जैसे ही कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आया उसकी तुरंत यहाँ पर तस्वीर आती है और फिर ये कंट्रोल रूम में जो राहुल बैठे हैं या कोई और बैठा होता है वो तुरंत मौके पर जो गेट पर स्टाफ होता है जहां पर ये शख्स होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सस्पेक्ट या अपराधी यहां पर दिख रहा है और पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको वेरीफाई करती है कि क्या ये जमानत पर है या ये गिरफ्तारी कैसे बच रहा है, कोई भागा हुआ अपराधी है। तो इस तरह के कैमरे जो है वो इसलिए लगाए गए हैं जंतर मंतर पर क्योंकि पुलिस को इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि वहाँ पर कुछ बैड एलिमेंट यानी कि असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं।
3: Right, my colleague Anushka is also joining us on the broadcast to shed more light on this. Anushka, important details that have now been revealed. If you could just walk us through the details of what exactly happened. We're understanding that as many as 400 criminals were spotted around the Jantar Mantar area.
5: That's right, Reed. The Delhi police have installed the FRS system, that is a van that is stationed just outside the very protest site where students are gathered. Now, because the numbers are so large, there's such a vast gathering, that is why Delhi police have installed it so that anyone having a criminal background can be identified and can be informed to the police officials so that the safety and security of all the protesters, all the students can be safeguarded. That is how the Delhi police have in fact gathered the intel that as many as 400 people having a previous record of criminal character has in fact been found there, and now we have seen the Delhi police have in fact gone on to say that 400 people were in fact found roaming in and around Jantar Mantar. Many of the people who were involved in vandalism were also having a criminal background is what the Delhi police have gone on to say. Remember, the protests are in fact going on peacefully. There are peaceful protesters who are gathered inside the Jantar Mantar area, but also there are some fringe elements who are entering the premises so that they can in fact disrupt the peaceful protest that is in fact going on inside Jantar Mantar. That is why Delhi police have installed the FRS system so that the peaceful protest can in fact continue being peaceful. and the bad characters can be identified and can be removed from the very site, you know, instantly, so that the peace remains in the Jantar Mantar area. And we have seen the Delhi police going on to say that there have been 400 people with a criminal background were roaming in and around Jantar Mantar from 20th till 24th of July. We have seen the FIR that has been filed so far. Delhi police have filed 15 FIRs in the case of vandalism and disruption of public property and violence and rioting. All these are, you know, FIRs have been filed on the people who were involved in the violence. But now we are seeing the investigation
3: right.
5: in fact going on in the very case. But we have seen the peaceful protests that have been going on in and around Jantar Mantar.
3: Absolutely.
5: And the kind of police,
3: Right, Anushka, you know, you've said something very important. While the police come out and say that this is for security measures, we've seen a lot of reels on social media as well with citizens calling it a violation of their privacy.
5: That's right, Preet, because people have gathered in such a huge number. We have seen that as many as, we can say, 1,500, 1,600 students are constantly at Jantar Mantar. More people keep on joining the protest when the evening hour comes. And we have seen, because today is Saturday and tomorrow is going to be Sunday, so many more people are expected to join the Jantar Mantar. That is why, for the safety and security of all those individuals who are involved in the peaceful protest, that is why the police have installed the FRS system just outside the Jantar Mantar area. Now, FIRS is a system where all the person having a previous background of a criminal record are identified. The dossier is saved inside the very van, and if the van identifies any such individuals roaming around the area, it immediately alerts the Delhi police, and that is how they inform it to the people who are deployed at the very place, so that the protest remains peaceful. Remember, the safety and security of the protesters is also of the utmost priority. New Delhi area is a highly sensitive zone. The FIRS van is always, not just in this protest, but it has also previously been used during Independence Day and other events, other major events also in Delhi NCR. And that is how the Delhi police have come to know that 400 people having a criminal background were spotted at the Jantar Mantar area between 20th to 24th of July. Over to you.
3: All right, Anushka, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Police and breaking news coming in from West Bengal. Let's take you through it. The Kolkata police has registered 6 FIRs against street protest violence. 5 FIRs have been registered for attacking media during the rally. 1 Suomoto FIR has been registered by the police. The West Bengal Chief Minister Shivendu Adhikari has vowed action against perpetrators. Video footage is behind scanned to identify. They've been scanned to identify the attackers. Multiple reporters, remember, sustained injuries while being on duty. So crucial updates now coming to the fore from West Bengal's Kolkata. My colleague Shreyasi joins us on the broadcast to shed more light on this. Shreyasi, these are some crucial updates now coming to the fore from Kolkata. If you could just walk our viewers through them.
6: Well, yesterday there were protests in Kolkata against the NEET paper leak, seeking the resignation of the Union Education Minister, the kind of protests that we have been seeing in Delhi and across the country. But during those protests, the protesters turned violent, especially towards the media. They were very hostile. There was name calling, sloganeering, and some of the reporters were also thrashed by pushing them on the road, taking away their mic. Their cameraman was heckled with water bottles being thrown at them, with water being thrown at the camera. And these violences, acts of violence have been caught on camera. Multiple reporters have sustained injuries and are hospitalized. The Chief Minister went to visit them last evening. So did the leader of the opposition, Ritobroto Banerjee. Now the Kolkata police has filed 6 FIRs to identify these miscreants and to take action against them, as vowed by the Chief Minister, who has said that those perpetrators were not part of these protest rallies, but tried to create an atmosphere of violence. There was mild lathi charge also yesterday by the Central Force and the police at the spot, because they were also attacked by the protesters with lathis and bottles being hurled at them. The police has begun a crackdown. All the visuals from that area is being closely examined to identify these people, and of course action will be following. We are waiting for a statement from the West Bengal Chief Minister today in the Vidhan Sabha regarding these violence.
3: Shreyasi, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Let's track some more developments for you. Well, Sonam Wangchuk has released a video clarification saying that his farce was never primarily about the Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation. He says his biggest concern was protecting students from FIRs and legal action, while insisting that the government was already facing enough political pressure over the resignation issue. Wangchuk says that he ended his fast only after receiving assurances that no action will be taken against protesters and that compensation will be considered. He adds that the decision was taken to prevent violence, maintain peace and ensure the students remain protected, not because the resignation demand had been dropped.
7: इस तारीख को ट्यूसडे को ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुँचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए. मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे वगैरह वगैरह. मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा. तो शर्तें पूछी गई हमसे, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन. वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए. पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए. और एक नया हमने जोड़ा कि जो भी छात्र CJP के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, FIR नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा. तो उन्होंने एक दो को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, दो तीन पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा और फिर वो चले गए. अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे. मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों. इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो सब जितने आ सकें आएं और फिर हमारे छात्र नेता CJP के आएं और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं. और क्योंकि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा हादसा का डर था तो मैंने इसे और एक दिन टालने से मना या अच्छा नहीं समझा इसे. और जितना जल्दी मैं ये कह सकूं कि मैं अनशन भी तोड़ रहा हूं, कृपया शांति रखिए, बेहतर होगा देश के लिए. और एक जगह अगर हिंसा हो गई तो तमाम शहरों में हिंसा होगी. आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है. आप घर बैठे सोफा पर से इसके साथ क्यों अनशन तोड़ा, उसके साथ क्यों नहीं तोड़ा, बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है. अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा, कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई, मैं ये पूछना चाहता हूँ. तो ऐसे हालात में जब खतरा था विस्फोटक स्थिति का, तो लद्दाख के नेताओं को लाकर उनके साथ मैंने बाज़ाब्ता बाकायदा लिखवा कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी छात्र नेताओं पर, छात्रों पर, CJP पर. और फिर लिखवाया कि कॉम्पनसेशन होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा. हाँ, मैंने अकाउंटेबिलिटी के बारे में उनसे ज़रूर कहा कि आप समय लेके भी करिए मगर ये करना होगा. आपको जोर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है ये वैसे भी होने ही वाला है, तो मैं और दो दिन के लिए इसको क्यों टालता. इस जितना जल्दी होता भारत की शांति के लिए ये उतना ही काम आता, ये अनशन का तोड़ना. तो ऐसे हालत में कल मेरा अनशन तोड़ना हुआ. मेरा सबसे बड़ा दुख था कि मुझे उन हालात में तोड़ना पड़ा रात के 12:30 बजे, जिसमें मेरे साथी जो छात्र हैं वो भी नहीं आ पाए, जो जो MPs यहाँ आए थे मिलने के लिए मुझसे, जिनको मैं बुलाना चाहता था दोबारा ताकि मैं उनके उपस्थिति में उनके हाथों से भी लेकर अनशन तोड़ूं, वो नहीं आ पाए, वो मेरे दिल का सबसे बड़ा दुख होगा।
8: फर्स्ट कांग्रेस पार्टी हैज अब्यूज्ड एंड इंसल्टेड सोनम वांगचुक, नाउ अभिजीत देबके फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ अरविंद केजरीवाल हैज आल्सो डंप्ड सोनम वांगचुक। It's so unfortunate. He says this protest does not belong to Sonam Wangchuk, the person who fasted for 25-26 days, because of whom students were galvanized. He has had a conversation with the government. Government has been responsive, receptive, sensitive. Whatever he has said, it has been accepted. He wants discussion in parliament, but some people don't want parliament and people's welfare. They want political credit. So they are abusing him. Imran Masood called him a dealer. Deepke ji is saying also all kinds of statements on him. It's very unfortunate.
9: Yesterday, Mr. Sonam Wangchuk, the face of the student protest, had met union minister and decided to break his fast and support dialogue and discussion in parliament on student-related matters. Immediately, Congress MP Imran Masood slandered Mr. Sonam Wangchuk and abused and attacked him for supporting debate and dialogue in parliament over NEET examination and related matters. If the Congress party even had a speck of care or concern for the students, they would willingly welcome a debate and dialogue related to student reform in parliament. But the Congress party doesn't want student reform. The Congress party and Rahul Gandhi do not want deliberation, dialogue or discussion.
3: Well, government sources tell NDTV that Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is not on the cards. According to government sources, the centre believes that quitting would be the easiest decision, while responsibility lies in staying and fixing the system. Government says that a list of problems within the NT is being prepared for reforms. Several paper league gangs have also been

0: देश का टायर, जेके टायर। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen. What fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
5: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
4: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज़।

0: Welcome back. This is the reason you're watching NDTV. From selling vegetables on the streets to winning India's first medal at the Commonwealth Games. An extraordinary journey of grit and determination. In an NDTV exclusive, Jhantu Kumar opens up about his inspiring rise, the struggles behind the success and the moment that changed his life forever. Here's NDTV's Rika Roy's exclusive conversation with a medal-winning champion. Listen in.
1: जंटू जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. सबसे पहले शुरू करते हैं ये बोलकर कि व्हेन इंडिया वेक्स अप टुमारो मॉर्निंग, आपके मेडल के बारे में सब जानेंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या है?
2: मैम, पहला जब हमने पहला वार्म अप कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमें मतलब कि कुछ अच्छा ही करेंगे. तो हमने पहला अटेम्प्ट हमने किए 181, तो हमें अंदर से और मतलब कि अंदर से फील आया कि हम और भी हम बेहतर कर सकते हैं. जी मैम.
1: फिर 191 आपने उठाया.
2: फिर मैम हमने 91 उठाए, तो उसके बाद हम सोचे कि फिर मतलब अच्छा लगा हमें कि उतना वेट उठाए. हमें लगा कि और बेहतर करेंगे, मगर टेक्निक फॉल्ट थोड़ा सा दिक्कत हो गया सर. मैम,
1: क्या ये एक्सपेक्टेड था ये, या फिर ये अपने आप आपको आपने सरप्राइज किया है?
2: नहीं नहीं मैम, मतलब कि एक
3: उम्मीद थी मैडम, उम्मीद थी, कंफर्म था,
2: उम्मीद था. मैम, हमारा कोच साहब थे तो वो पहले ही से ये प्लान बना रखे थे.
1: झंडू जी, मुझे थोड़ा सा बताइए, 2023 में आपने अपना ई रिक्शा बेचकर नेशनल में दाखिला की, वहां से आपका दौर शुरू हुआ. थोड़ा सा बताइए कैसे आप यहाँ तक आज पोडियम तक पहुंचे.
2: हमने 2016-17 से हमने जिम कर रहे थे, 2016-17 से जिम कर रहे थे, मगर हमें पता नहीं था पैरा पावर लिफ्टिंग के, मतलब पैरा का कोई गेम हमको पता नहीं था. तो हमने 2018-19 में हमको पता चला कि शॉर्ट पुट डिस्कस भी होता है. तब हमने वहाँ के जो होता है बिहार शरीफ का जो सेक्रेटरी होते हैं, वो हमें से मिले और हमें बताए कि पैरा पावर लिफ्टिंग भी होता है. और उसके बाद हमने उस चीज को करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे मैनेज करते हुए. मतलब सब्जी भी बेचना था हमें और ट्रेनिंग भी करना था हमें. हम खुद से ट्रेनिंग करते थे.
1: जी झंडू जी, आपने बोला कि आपने 2016 में शुरू किया था.
2: हमने 22 में जब हम गए थे कोलकाता खेलने के लिए, तो हमने उस समय 135 का बेंच लगा रहे थे क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था. इसलिए हमने ब्रॉन्ज मेडल हमने पहला ही नेशनल खेले थे अपना बिहार के लिए. बहुत अच्छा लगा हमें और इतना खुशी था हमें कि मतलब कि एक दिन तो सोए थे ही नहीं हम. तो फिर हमने इस चीज का मेहनत, हम सोचे कि हम यही करेंगे क्योंकि इसमें बहुत मतलब सर मैम की गर्व होता था अंदर से. लोग हमें बहुत अच्छा से मतलब देखते थे और बहुत सा बात है ना मैम. तो उसके बाद हमने
1: और 2023 में आप अपने ई रिक्शा
2: 2022 में जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमारा दुकान हमारा ओवर ब्रिज में चला गया, मतलब रोड में चला गया वो, तो दुकान बंद हो गया. तो फिर मजबूरी में हमने ई रिक्शा लिए. तो जब हम ये रिक्शा चलाने लग रहे थे तो ट्रेनिंग हमारा दिक्कत हो रहा था उसमें करने के, मतलब कि बॉडी हमारा थक जाता था तो ट्रेनिंग हो नहीं पा रहा था. तो फिर 2023 में हमने नेशनल, हाँ 2023 में जब हमारा नेशनल चैंपियनशिप आया मैम, तो फिर हमने रिक्शा को बेच दिए क्योंकि आर्थिक सपोर्ट के नहीं के कारण होके, और हमने बेच दिए उसको.
3: मैडम,
1: सवाल

0: ये मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: तो ये तो मैम, ये तो अपना गर्जियन है, घर वाला, माँ पिताजी, ये सब बहुत मेहनत इसको अति करने के लिए, कोच हो गए, पीसीआई हो गए, और मैम
2: स्वतंत्र
1: साई गांधीनगर गुजरात हो गए, वो साहब हो गए, ये सबको हम पूरा ये मतलब कि
0: मेडल
1: ओलंपिक,
0: दिखा दीजिए आप।
1: ये रहा मैम बेटा।
2: हाँ मैडम,
0: थैंक
2: दिख
0: यू,
2: रहा है मेडल, दिख रहा है
0: बिल्कुल थैंक यू।
2: ये
0: और
2: मेडल, ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्साई और खेल मंत्रालय सभी को डेडिकेटेड है, पूरे देश के लिए। थैंक यू वेरी
0: थैंक
2: मच।
0: यू वेरी मच। थैंक यू जी।
2: ओके,
0: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: अब FRS सिस्टम काम कैसे करता है, जो FRS इनेबल कैमरे हैं वो यहाँ पर अगर कोई अपराधी घूम रहा है या कोई संदिग्ध है, कोई असामाजिक तत्व है जिसका पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की पहचान करता है और तुरंत उनकी तस्वीर यहाँ पर आती है और यहाँ पर जो उनका डोजियर है यानी कि जो उनका पुराने केस हैं उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर आता है। तो जैसे ही कोई सस्पेक्ट आता है इन कैमरों की जद में, चाहे भले ही सैकड़ों लोग खड़े हों, उनमें से उस सस्पेक्ट की फ़ोटो वो निकालता है और पूरी फ़ोटो जो उसका पूरा बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कंट्रोल रूम में बैठा शख्स होता है और नोटिफिकेशन आते ही उसकी पूरी जानकारी यहां पर आती है। और राइट में ये आप जो देख रहे हैं डेटा, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हज़ारों की संख्या में जो असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, उन सब का यहाँ पर डेटा इस सॉफ्टवेयर में है और पूरा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पूरा डोजियर है, फोटो तस्वीरें, वो सारा इस सॉफ्टवेयर में होता है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो FRS इनेबल कैमरों से कनेक्ट होता है और जैसे ही कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर आया उसकी तुरंत यहाँ पर तस्वीर आती है और फिर ये कंट्रोल रूम में जो राहुल बैठे हैं या कोई और बैठा होता है वो तुरंत मौके पर जो गेट पर स्टाफ होता है जहां पर ये शख्स होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि ये सस्पेक्ट या अपराधी यहां पर दिख रहा है और पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको वेरीफाई करती है कि क्या ये जमानत पर है या ये गिरफ्तारी कैसे बच रहा है, कोई भागा हुआ अपराधी है। तो इस तरह के कैमरे जो है वो इसलिए लगाए गए हैं जंतर मंतर पर क्योंकि पुलिस को इस तरह के इनपुट मिल रहे थे कि वहाँ पर कुछ बैड एलिमेंट यानी कि असामाजिक तत्व, अपराधी किस्म के लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं।
1: Right, and it's been 5 days since the first violent clash that started in Jantar Mantar in Delhi. The fallout continues. Protesters and police personnel have both paid a price, and the tension refuses to die down. The police continues to face allegations of excessive force, with Rahul Gandhi presenting a young man who claimed he suffered pellet injuries. At the same time, the police say that they have come under attack as well over the past few days, with multiple FIRs that have been registered and scores of security personnel being injured. Around 60 protesters were also injured in the clashes that took place on the 20th of this month. The bigger question is who is, responsible for this as far as, this confrontation is concerned. Why does the cycle keep repeating? And to understand what happened on the ground, we have Padmaja, my colleague, speaking to two police officers. Let's listen in.
2: मैं आपसे शुरुआत करती हूँ प्रदीप जी, ये बताइए कि ज्यादातर तो लोग को लगा था कि जो भी हिंसा हुई थी 20 तारीख को ही हुई थी, 21 तारीख को आपको चोट कैसे लगी? पहले ये बताइए आपको चोट लगी क्या है?
3: 21 तारीख को करीब शाम को 7:30 बजे हम लोग मैम कौसा रोड पर जंतर मंतर के पास खड़े थे और वहां पर मैम कुछ गैदरिंग 700-800 लोगों की थी और मैम देवर मूविंग टुवर्ड्स अपना संसद मार्ग और वहां पर जो है हमारे ऑफिसर्स और हमने जो है उन लोगों को रोकने की कोशिश की भाई कि आप लोग जो है इस आगे मूव मत कीजिए और उनको समझाते हुए आपस में बातचीत करते हुए कुछ लोग उसमें अग्रेसिव हो गए मैम और उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया।
2: किस तरीके से अटैक किया आपको, ये चोट जो लगी है सर पे कैसे लगी है?
3: उसमें कई तरह के एलिमेंट्स थे मैम, उसमें पथराव भी हुए हैं, बॉटल भी फेंकी गई है, कुछ मतलब शार्प चीजें भी फेंकी गई है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे क्या लगा, बट मैम जो है कोई शार्प वेपन था बिकॉज मैम चार टाके लगे और आंख के ऊपर जो है मैम काफी गहरी चोट।
2: आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके के लोग थे, क्योंकि पुलिस में आपको एक अंदाजा होता है और ये बात भी सच है कि जब मैं जंतर मंतर गई थी तो वहां पर कई मुझे ऐसे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे हैं वो दिखे थे, जो वहां पर अपना एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर गाना गा रहे थे, झंडा पकड़े हुए थे, पर एक साइड ये भी है कि कुछ उपद्रवी थे। क्या बैकग्राउंड के लोग आपको ये लग रहे थे, क्या उम्र क्या होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, कुछ बताएंगे?
3: एज ग्रुप हर किस्म के थे, बच्चे ही थे और उसके अंदर में मिक्स एज ग्रुप के लोग थे और फ्रॉम माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बहुत से एलिमेंट्स थे मैम और जो उनका बिहेवियर था और वो मैं सर्टनली कह सकता हूँ कि वो स्टूडेंट्स का नहीं था। पीएलबी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में हमने ड्यूटी कर रखी है, हर जगह हम लोग जाते हैं और स्टूडेंट्स कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते और ना ही करते, तो एज पर माई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैम देवर नो स्टूडेंट्स।
1: And with that, it's a wrap on this edition. We will continue our coverage as far as what's happening at Jantar Mantar, and will those talks, the round three between the the CJP and the government, is going to take place today, this afternoon, or not? Do stay tuned to NDTV 24/7.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
6: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
5: Catch the exclusive coverage only on NDTV

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
7: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
6: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा।
3: India is at a 2030 turning point. EVs, hybrids, biofuels, or hydrogen. What fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts, and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
4: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
3: Catch the exclusive coverage only on NDTV.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: इंडिया इज एट अ 2030 टर्निंग पॉइंट। ईवीज, हाइब्रिड्स, बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन, व्हाट फ्यूल विंस वेयर? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
5: Where do you need charging infrastructure? You need it on highways.
4: Catch the exclusive coverage only on NDTV Automate.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: दिस इज इंडिया इंक्स रोल ऑफ ऑनर, रेकग्नाइजिंग द लीडर्स शेपिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, वेयर एंबिशन, एंटरप्राइज एंड एक्सलेंस मीट इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंस।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: इंडिया इज एट अ 2030 टर्निंग पॉइंट। EVs, hybrids, biofuels or hydrogen, what fuel wins where? Join top auto CEOs, policy experts and industry titans at the NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026.
6: Where you need charging infrastructure, you need it on highways.
5: Catch the exclusive coverage only on NDTV Automate.

0: कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़।
1: Let's just cut across to the police, who are holding a press conference on the protests as far as the NEET exams are concerned.
2: पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज़ और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सके। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जैसे इससे पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था, उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, यह भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
3: दोस्तों, आज
2: ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी

0: फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में एआई या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
1: दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
0: ठीक है। एक अन्य डीपफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी डीजीएमओ के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है।
2: प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई हैव ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेस टू न्यू दिल्ली। वी मस्ट क्रश द एंटी नेशनल एंड टेररिस्ट प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। दीज टेररिस्ट हैव अटैक्ड पुलिस एंड आरएएफ पर्सनल व्हाइल ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट वी विल क्रश एवरी हेड दैट।
0: ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, बट आज दिखाने के लिए हम कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इररेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।
3: रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और।
4: This was the first press conference as far as the situation at Jantar Mantar by the police. The police are saying that do not rely on what you see on social media, because using social media platforms is, you know, those are deep fake and AI generated videos that have been edited. And that is something that the police there is warning of, saying any information on social media gets viral instantly and it's not necessary that every post you see on social media is true, and citing examples of that, saying that there was one such post on social media that in fact went ahead and reported that one woman had died in the protest, which is false, that because there was nobody who died in the protest that took place at Jantar Mantar on the 20th. So that is something that the police has come out and said. And there was one political leader sharing a video on social media that the Delhi police is about to crack down on the protesters on social media, because of which the atmosphere got tense. And that is something that the official has gone ahead and said, that there have been you know, the officials there coming out and, you know, talking about the kind of you know, presence as far as the social media presence is concerned, and that really has aggravated the situation, that took the situation out of hands. And that is what the police had to say in their defense of what really transpired on the 20th at Jantar Mantar. So the cops there speaking on you know, claiming that information has been altered while, you know, using social media to spread that very message. Anushka, my colleague, is joining us in order to get us details. Anushka, take us through, you know, we just heard the police there speaking on the matter for the very first time, breaking the silence, talking about what really went on and how social media has a big, huge role to play in it.
5: Well, that's right. We have seen that the DCP of Central Delhi has, in fact, in a press conference, shared how social media, deepfakes and AI are being used to spread false information and edited videos. He has in fact also gone on to say that multiple times it has been seen that false news has circulated. Any information on social media that gets viral instantly is not necessarily true. And every post that you can see is in fact sometimes generated through AI, deepfakes and edited videos that are being fact-checked so that the people get the right information. He's also shared about instances that has gone viral on social media, which later on proved to be false. Now, he has also in fact shared that it was spread by the social media that a woman has died in the protest, which was false. Nobody has died in the protest. One political leader, the DCP, has gone on to say that he shared a video that the Delhi police is about to crack down on the protesters on social media, because of which the atmosphere got quite tense there, and the Delhi police had to check it by in fact giving out tweets regarding it, saying that such is not the case. The DCP has in fact also gone on to say that 400 Pakistani handles were involved in spreading false narrative and trying to alter the protest, the peaceful protest that has been going on at Jantar Mantar. The DCP has gone on to say that it had to be blocked. Also, we have seen that the official bites of Delhi police have also been altered using social media.
4: Right, and blocking those social media handles, 480 to be precise, that originated from Pakistan in order not to mislead the protesters at Jantar Mantar. Thank you so much, Anushka, for getting us those details. Time for a short break. Back with a whole lot more. Stay with us.

0: क्रीम चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, of Saturday.
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान.
0: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद. तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन

0: उस प्रदर्शन की तीन मुख्य मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन एफआईआर्स को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ, एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
1: तो आप लोग
0: जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ। सर मे बी इफ यू कैन।
2: मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटर्न मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक फोर पॉइंट्स था, उसका लबो लबाव ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो फाइव पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस फाइव पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई।
2: चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया।
1: Well, a big announcement there by Cockroach Janata Party spokesperson Saurav Das and Ashutosh Ranka, both of them announcing that the CJP withdraws the protest now as all their demands have been met. They've, of course, given the government some time to come up with a final format on education reforms. They've also said the government has also agreed to their demands on withdrawing cases against protesters on July 20th and also about compensation to families that have faced deaths due to NEET paper leaks. But the main point is CJP spokespersons have announced that the protests now stand withdrawn. They've asked protesters to go home safely, which means that the deadlock seems to have been resolved, at least for now. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, the big takeaways from the joint press conference today, the ministers there, JP Nadda and Dr. Jitendra Singh also shaking hands with CJP spokesperson Saurabh Das and Ashutosh Ranka. Remember, this is a small outfit, you know, it's a reactionary outfit. It's not even a political party that came into force just a few weeks ago. It started protest at Jantar Mantar seeking resignation of Dharmendra Pradhan, the education minister. NEET paper leak was amongst its core issues. Sonam Wangchuk, the activist, joined them. He fasted and then his fast was broken. The ministers have been talking to these leaders for some time now. It's the third round of talks at Constitution Club. The talks seem to have reached a conclusion, with both the spokespersons now announcing that the protests are being withdrawn. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, the big highlights of today's press conference.
3: Well, the very important point, JP Nadda clearly stating that yesterday it was a 5-point charter that was handed over by the Cockroach Janata Party to the Government of India. And the government has agreed to have discussion on that 5-point charter that will be changing the reforms in the examination and education system of the country. And that will be discussed, and the government will get back to the CJP after 4 weeks of time. That has been also one of the very important point that was announced. But it was a joint press conference, the meeting that lasted between the CJP delegation and the union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh for almost 1.5 hours. That concluded with a joint press conference over here at the Constitution Club. The CJP delegation, which comprises of Ashutosh Ranka and Saurabh Das, categorically stated that after the talks with Government of India, they have decided to withdraw this particular protest at Jantar Mantar and all across the country, and also urge the protesters and students.
1: Aishwarya, I'm sorry to interrupt you. There's more information coming in from the presser. Let's take a look at it.
0: जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए। एक मिनट, आप बताइए। देखिए, इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा, और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किए, और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे, सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ, और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया। ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है, उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे, और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली
4: गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स है एंड जो एंकर्स है और जो एडिटर इन चीफ है, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए।
1: That's Saurabh Das and Ashutosh Rank of the Cockroach Janata Party making it very clear that their demands have been met by the government and that the protests stand withdrawn now. But they're also saying that it's important for people to understand that these demands were raised by them almost a month ago. It took time for the government, but now they've been met. My colleague Aishwarya Jain joins us with more details on this. Aishwarya, a 5-point charter has been given to the government by the CJP, the Cockroach Janata Party. And this is to do with education reforms. The government says that it will look into those reforms, those moves, those important efforts that are needed, and then it will get back to them after 4 weeks. But their more important demand of Dharmendra Pradhan's resignation has already been accepted. He has resigned already, which means, the battle for them is done, and they're asking supporters, they're asking protesters to go back home. Does that mean that the protest is likely to end in the next few hours?
3: Well, that's something that has been also urged by the Cockroach Janata Party spokespersons to the protesters and students out here, stating that yes, the students should go back to their homes and the demands have been met by the government of India. It took time, obviously. They the joint press conference ended, they are holding their own separate press conference over here. They stated that it took time for these talks. The government should have come to the students much earlier, and they shared that disappointment at last, but agreeing to all the demands, it seems that the deadlock has finally ended between the students and the Cockroach Janata Party. Of course, the three demands pertaining to, number one, the resignation of Dharmendra Pradhan has been accepted. The compensation is something that JP Nadda categorically stated that according to the rules, the compensation will be given to the parents of those students who lost their life, and this is unfortunate that governments also thinks on their part. Number three, there will be no FIRs that will be registered, and the FIRs that have already been registered will be withdrawn. And JP Nadda specifically stated about those FIRs that have been registered in the BJP ruled states and in the national capital as well. Yes, of course, as far as the 5-point charter, it was submitted by the CJP delegation to JP Nadda yesterday.
1: Sorry to interrupt you again. Activist Sonam Mangchuk is speaking now. This is first reaction after today's updates. Let's listen in.
5: जो आज हमने देखा

0: हुए, उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाई उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो, मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा, और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है, उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें, तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। क्योंकि
1: Activist Sonam Wangchuck, in his first reaction after Dharmendra Pradhan's resignation, has said that the protesters had sought accountability. They have gotten accountability now. Now it's time to work on reforms. He says that India can be on the path to become Vishwaguru. And he also credits peaceful protests, the peaceful agitation that he and the CJP protesters led for the last 1 month as the reason for this change. He said that this is a new beginning and that everyone has to work collectively towards change. Changes that are necessary in the education system. Aishwarya Jain is here with us. Aishwarya, we were talking about the big takeaways from the joint press conference that ministers and CJP leaders held today. First of all, this joint press conference itself is quite an interesting idea, right? That means that the government wanted them to be seated on an equal footing. It wants an answer to this question. It wants resolution of the protest, and that seems to have really come because CJP leaders have called off the agitation now because their demands have been met.
2: Well, certainly, and government was formed the very first day very sensitive about the students' welfare and the youth welfare, and therefore the reason perhaps as soon as the government and Prime Minister also himself stated that for the last 2.5 months the government has taken many major steps in reforming the education system. The decisions were taken in the past as well, and they are listening very with very sensitivity about the students' demands. Certainly the CJP on one side stating that it's a bit late, the government could have come very earlier to them and the things could have resolved before,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: वी आर ओवर जिमी।
6: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं?

0: This is the use of coercive force, lathis, pellet guns, and did not flinch and bore those atrocities with fortitude. It's a victory for all of them.
1: सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।
2: आई थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहां खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया। आई थिंक गांधी इज इंडिया इज रिक्लेमिंग इज स्पेस इन आवर कंट्री। द यूथ हु डोंट बिलीव इन डिविजन, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला। और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन एंड दिस रिजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप towards reclaiming what India should look like.
3: देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता इतने पूरे देश में। वह लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे।
4: You know, today everyone is talking about the power of youth, but look, at the end of the day, it's all going to boil down to politics, Vasudha, and to put it very, very crudely and bluntly, who's going to walk away with the credit? That is what we are going to see over the next 3 weeks when Parliament finally functions.
5: That's right, Padma. In fact, there's also this, journey for credit. But at the same time, there are also disagreements which have cropped up in the last many days because, you know, clearly CJP and Congress have their own disagreements. Congress and Samajwadi Party have their own sense of
4: differences
5: as well. Yes, and they are openly fighting with each other as well. So at some level, maybe the government is also very clear that it's reaching out to youngsters directly and it's hoping that this decision, Dharmendra Pradhan's resignation, will hold it in good stead, at least with this demographic.
4: In fact, we'll talk much more about that. Time now for a very quick break. More on the other side with Vasudha.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: enhanced number of followers in Insta can resolve the issue. And I can tell you one thing, he should have read the writing on the wall instead of what was written in teleprompter.
1: It is a victory for the student and the youth movement of India, for Generation Z or Gen Z as they are called, and their fearlessness in the manner in which they stood up to unprecedented state excesses, the use of coercive force, lathis, pellet guns, and did not flinch and bore those atrocities with fortitude. It's a victory for all of them.
2: सरकार झुक गई है, सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, अब इस्तीफा आया, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था। एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया।
3: I think it's a victory for the youth of India, जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया। I think Gandhi's India is reclaiming its space in our country. The youth who don't believe in division, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन एंड दिस रिजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टू रिक्लेमिंग व्हाट इंडिया शुड लुक लाइक।
4: धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, ये एक नैतिक जीत है, लेकिन केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही इसका कारण नहीं है, इसके पीछे तमाम चीजें और हैं। सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ये क्या थोड़ी बड़ी जीत है?
5: देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता इतने पूरे देश में होया। लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि उनमें विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे।
6: हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी।
7: अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द गवर्नमेंट, प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 इयर्स अ सिटिंग मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सराउंडेड बाय कंट्रोवर्सीज बाय प्रोटेस्टर्स हैज रिजाइंड। इट विल हैव इम्प्लिकेशंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, ऑल्सो ऑन ऑपोजिशन पॉलिटिक्स एंड यस ऑन स्ट्रीट पॉलिटिक्स एज वेल। व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन मंडे इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, बट व्हाट वी आर वेटिंग नाउ इज ऑल्सो द नेम ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू बी गिवन दिस चार्ज। रिमेंबर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी ऑन हूएवर द नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज। वी आर टोल्ड दैट द अनाउंसमेंट कुड कम एनी टाइम नाउ, इट कुड इवन बी टुमारो मॉर्निंग, बट heads in the government are working towards giving this responsibility to a seasoned cabinet minister. With that, it's time for a short break. My colleague Padmaja Joshi joins you on the other side.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: Launch control, zero.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we're sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: R Pure Shahi Paneer Masala.

0: इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था।
1: I'm very very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people.
2: इस गवर्नमेंट को तोड़ने में जहां बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही, वहां पे देश की जेंजी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल 16 साल 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया, और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।
3: Alright, with that, it's time for us to slip in a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: से लखनऊ राजधानी में अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था।
1: वेरी वेरी हैप्पी फॉर मेनी रीजंस, बट द मेन रीजन इज दैट आई बिलीव टुडे द 25th of July 2026 इज द डे that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people.
2: Is government ko todne mein jahan badi badi opposition partiyan nakam rahi, wahan pe desh ki gen z ne, desh ki yuva pidi ne, ye 17 saal 16 saal 18 saal ke bachchon ne देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया, और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।
3: All right, with that, it's time for us to slip in away a quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
4: जिमी, hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: रीबिल्ड, दे लेड, दे रीडिफाइंड द बिजनेस कॉन्वर्सेशन। नाउ इंडिया इंस फाइनेस्ट टेक सेंटर स्टेज। हु विल विन The NDTV Profit Business Leadership Awards, 26 July on the NDTV Network.

0: have been arrested. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया. उस अमेंडमेंट में 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन है. इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था. ये रिसेंटली ये कानून हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स आया है. तो इसके कारण अभी जो होगा इसका कन्विक्शन और डर भी ज़्यादा होगा. तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, इतने लोगों को अरेस्ट किया है. नॉट ओनली दैट, जब ऐसे लीक हुआ, ऐसे पता चला, इमिडिएटली इसका एग्जामिनेशन कैंसिल किया. एक नीट एग्जामिनेशन फिर से चलाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन विद इन 40 डेज री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया. अभी सीट मैट्रिक का इशू चल रहा है, अभी काउंसलिंग होगा. तो जो लोग अपीयर हुआ, 11 लाख लोग क्वालिफाई हुआ है, तो वो क्वालिफाइड मार्क्स आने के बाद इसका काउंसलिंग होगा. तो ये सब को अभी वो तैयारी में है. दे आर बिजी इन दैट. स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल, वो उसमें बिजी है. और पहले इनका डिमांड था क्या अपोजिशन का, कि डिबेट हो जाए. हमने बोला डिबेट हम तैयार है. जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए. तो मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन.
1: And from deadlock to breakthrough, after 30 days of protest, the government student standoff is finally over. The center has announced an overhaul of the National Testing Agency and sweeping education reforms. Here's how the education protest ended.
2: The slogans have stopped. The protest site that became the epicenter of NEET paper leak movement has been vacated. After 36 days of demonstrations, fasts, and negotiations, the CJP agitation has ended. The announcement came moments after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, CJP's principal demand since the protest began. In an unusual joint press conference, Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh stood alongside CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. The message from both sides was clear. The standoff was over.
3: The Kokrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.
2: The breakthrough, CJP says, extends beyond the minister's resignation. According to the group, the government has agreed to withdraw police cases filed against protesting students. It has also assured that no future punitive action will be taken against them for participating in the agitation. Another key assurance relates to families of students who allegedly died by suicide in connection with the NEET paper leak controversy. The government, CJP says, has agreed to provide compensation in accordance with applicable rules and regulations.
4: जो 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पेंसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पेंसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा.
2: इन द लास्ट 48 आवर्स द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड स्वीपिंग रिफॉर्म्स, रिप्लेसिंग द एजुकेशन सेक्रेटरी, रिमूविंग डजंस ऑफ एनटीए ऑफिशियल्स, approving tougher anti-paper leak legislation and proposing fast-track courts. But protesters remained firm. They insisted the movement would continue until Dharmendra Pradhan resigned. On Saturday, the demand was met.
5: Diwali of Genjis, the first time history of India.
6: It is starting of a new era for the new people of India.
2: Now both sides are projecting the outcome as a negotiated settlement rather than a

0: will oversee the Education Ministry until further orders are received. A senior BJP leader and a seasoned parliamentarian, Prahlad Joshi has long experience in both the parliament and the BJP as well. Now, Prahlad Joshi began his political journey through a student politics, and he comes from a strong RSS background as well. He is a former Karnataka BJP president and a multiple-term MP from Dharwad. He now takes charge of the Education Ministry as well. Here's an interview that my colleague Aishwarya did just few days back with Prahlad Joshi on the education reforms in the country. Listen in.
1: Prime Minister and the entire government, it is very, very sensitive about the whatever the paper leak in the country. Isse pehle bhi jo hua hai, aaj bhi jo hua hai, we are very much sensitive. We are very much, humne bahut hi hamara concern hai hamare bachchon ke bare mein, unke bhavishya ke bare mein. To isiliye humne ek to pehle to ye kiya, pradhanmantri ji ne ye kaha hai, jo bhi isme zimmedar the ऑफिसर्स जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड. वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार. एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था. प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून. इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया. उस अमेंडमेंट में 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन है. इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था. ये रिसेंटली ये कानून हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स आया है. तो इसके कारण अभी जो होगा इसका कन्विक्शन और डर भी ज़्यादा होगा. तो पीएम साहब ने ये कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, इतने लोगों को अरेस्ट किया है. नॉट ओनली दैट, जब ऐसे लीक हुआ, ऐसे पता चला, इमिडिएटली इसका एग्जामिनेशन कैंसिल किया. ये एक नीट एग्जामिनेशन फिर से चलाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन विद इन 40 डेज री एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया. अभी सीट मैट्रिक का इशू चल रहा है, अभी काउंसलिंग होगा. तो जो लोग अपीयर हुआ, 11 लाख लोग क्वालिफाई हुआ है. तो वो क्वालिफाइड मार्क्स आने के बाद इसका काउंसलिंग होगा. तो ये सब को अभी वो तैयारी में है. दे आर बिजी इन दैट. स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड दे गॉट सक्सेसफुल, वो उसमें बिजी है. और पहले इनका डिमांड था क्या अपोजिशन का, कि डिबेट हो जाए. हमने बोला डिबेट हम तैयार है. जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए. तो मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब पावर में है करप्शन, जब अपोजिशन में है तब डिसरप्शन.
0: एंड फ्रॉम डेडलॉक टू ब्रेकथ्रू, आफ्टर 30 डेज ऑफ प्रोटेस्ट, द गवर्नमेंट स्टूडेंट स्टैंड ऑफ इज फाइनली ओवर. द सेंटर हैज अनाउंस्ड एन ओवरहॉल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड स्वीपिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स. हियर्स हाउ द एजुकेशन प्रोटेस्ट एंडेड.
2: द स्लोगन्स हैव स्टॉप्ड. The protest site that became the epicenter of NEET paper leak movement has been vacated. After 36 days of demonstrations, fasts and negotiations, the CJP agitation has ended. The announcement came moments after the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, CJP's principal demand since the protest began. In an unusual joint press conference, Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh stood alongside CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka. The message from both sides was clear. The standoff was over.
3: The Congress Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline.
2: The breakthrough, CJP says, extends beyond the minister's resignation. According to the group, the government has agreed to withdraw police cases filed against protesting students. It has also assured that no future punitive action will be taken against them for participating in the agitation.